0: सोता शुदा यूरेन के मामला भी शामिल हैं। तहम वाशिंगटन का ख्याल है कि जोहरी मसला किसी भी मुस्तकिल जंगबंदी से पहले बहस करके हल किया जाना चाहिए।
1: एथेंस की जानब से तुर्क दिफाई सनद के हवाले से एक हैरान कन एतराफ़ सामने आया है। यूनानी वजीर दिफा निकोस देंदियास ने कहा है कि दिफाई सनद में तुर्की के बड़े इकदाम और हासिल करदा कामयाबियाँ हर किस्म की तारीफ के हकदार हैं। एक कॉन्फ्रेंस में खुलकर बात करते हुए यूनानी वजीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि तुर्की ने टेक्नोलॉजी की अहमियत को बहुत जल्द भांप लिया है। यूनानी वजीर ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब बहुत से ममालिक ये भी नहीं जानते थे कि ड्रोन्स का क्या मकसद होता है, तुर्की ने ड्रोन्स की पैदावार की एक ख़ास सतह हासिल कर ली थी। हमें यह तस्लीम करना चाहिए कि हमारे हमसाए ने हालिया बरसों में पैदावारी सलाहियत को नुमाया तौर पर फ़रोग दिया है। दंदियास ने खासतौर पर अफ्रीका और तरक्की पजीर ममालिक को तुर्की की दिफाई सनत की बरामदात की तरफ भी तवज्जो मबजूल करवाई। इस बात पर रोशनी डालते हुए कि इस सूरत हाल ने तुर्की को एक इंतहाई संजीदा सिफारती असर व रसूख और ताकत बख्शी है। यूनानी वजीर ने एतराफ़ किया कि हमें इसे कबूल करना होगा, यह हमारे हमसाये की कामयाबी है।
0: तीन आलमी गैर सरकारी तंजीमों ने जमेरात को कहा है कि क्वांटा के गजा के लिए मनसूबे की मंजूरी के 6 माह से ज़ायद वक्त गुजर जाने के बावजूद वहाँ इंसानी सूरत हाल अब तक होलनाक बनी हुई है। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि वह अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। ऑक्सीफॉर्म सेव द चिल्ड्रन रेफ्यूजीज इंटरनेशनल के नुमाइंदों ने न्यूयॉर्क में क्वांटा के हेडक्वार्टर्स में साफियों को बताया इसराइल के वादों और फलस्तीनियों के सामने मौजूद हकीकी हालात के दरमियान बड़ा खला मौजूद है। ऑक्सीफॉर्म अमरीका की सदर ए बी मैक्सन मैन ने कहा इसराइल ने ज्यादातर तजर्बाकार इमदादी इदारों को जरूरी सामान लाने से रोक रखा है, जैसे पानी की निजाम की मरम्मत के लिए पाइप, पनाहगाहें, तामीनाती मवाद, तिब्बी साजोसामान जो दरकार सतह पर हैं। उन्होंने कहा ये सब इसके बावजूद है कि तमीर नाव माशी तरक्की तवील मुद्दती खुशहाली के वादे किए गए थे। सर्जन हाल ही में गजा से वापस आने वाली अमरीकी सर्जन टेरेसा सोल्डनर ने कहा तशद्दुद भी बेरहमी से जारी है और मुसलसल इसराइल हमला कर रहा है। सोल्डनर ने कहा जब मैं गजा में थी तो रोजाना सदमे के मरीज आते थे। मेरा ख्याल है फलस्तीन निजाम सेहत बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। उगांडा की सलामती कौंसिल ने नवंबर 2025 में एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें अमरीकी हमायत याफ्ता मनसूबे की तोसी की गई और इसमें इंसानी इमदाद की मुकम्मल बहाली का मुतालबा किया गया था। सेव द चिल्ड्रन की जानती सोरुप्टो ने कहा हमारे हेल्थ क्लिनिक्स में बच्चे अब भी शदीद आर्जी किल्लत गजाइत के साथ आ रहे हैं। बताया कि जनवरी से अप्रैल तक इनकी तादाद बढ़ी है। सोरुप्टो ने कहा तालीम निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज होने की वजह से 6 लाख से ज्यादा बच्चे मुसलसल तीसरे साल स्कूल जाने से कासिर रहेंगे। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरान ने जुमे को लुबनान के लिए अपने नामज़द सफ़ीर को हदफ बनाने वाली नई अमरीकी पाबंदियों और मुतादा लुबनानी सियासी अस्करी और सिक्योरिटी हुकाम पर आए पाबंदियों की मजम्मत की है। ईरानी वजारत खारजा ने अपने नामजद नुमाइंदे मोहम्मद रजा शिबानी पर अमरीकी महकमा खजाना की पाबंदियों को गैर कानूनी और बिला जवाज़ करार देते हुए शदीद तनकीद की। वजारत ने इस इकदाम को अमरीकी हुक्मरान तबके की कानून नापसंदी और बैन अल-अक़वामी कानून और अक़वामे मुत्तहदा के मंशूर के बुनियादी असूलों बिलखसूस रियासतों की कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम के असूल की खिलाफ वर्जी की एक और मिसाल करार दिया है। ईरान ने हिजबुल्लाह के चंद लुबनानी पार्लिमानी कानून सازوں तहरीक अमल के अहलकारों और मुतादद लुबनानी अस्करी और सिक्योरिटी हुकाम पर आयद अमरीकी पाबंदियों की भी मजम्मत की। जमेरात को अमरीकी उमूर खजाना ने 9 अफराद पर पाबंदी आयद की जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्होंने हिजबुल्लाह को लुबनान की खुद मुख्तारी को कमज़ोर करने की सहूलत फराहम की और उन्हें लुबनान में अमन के अमल को रोकने और इस ग्रुप की बेहथियारी में रुकावट डालने के लिए नामजद किया। इन पाबंदियों में हिजबुल्लाह से मुंसलिक कानून साज इब्राहिम अल मूसवी, हुसैन अलहाज हसन, हसन फजलुल्ला और साबिक वजीर मोहम्मद फिनी शामिल हैं। नेस ऐसे लुबनानी अस्करी व सिक्योरिटी हुकाम भी शामिल किए गए जिनमें वाशिंगटन ने हिजबुल्ला के साथ अहम खुफिया मालूमात शेयर करने का इल्ज़ाम आयद किया है।
0: लुबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जुम्मे के सुबह जनूबी लुबनान के कस्बे हनुया में एक हंगामी इमदादी मरकज पर इसराइल फजाए हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। एक इसराइल जंगी तैयारी ने कस्बे में इस्लामिक तिब्बी इंतजाम के मरकज को निशाना बनाया जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक, 2 तिब्बी इमदादी कारकुन जख्मी हुए। एजेंसी ने मजीद बताया कि सदकीन और काना के कस्बों के दरमियान हफूर के इलाके को निशाना बनाने वाले एक और हमले में 3 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। यह हमला जनूबी कस्बे तबनीम के एक अस्पताल को इसराइल फजाए हमले में शदीद

0: नुकसान पहुंचने के एक दिन बाद हुआ। लुबनान वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार से मालूम होता है 2 मार्च से अब तक लुबनान में इसराइली हमलों में कम अज कम 16 अस्पतालों को नुकसान पहुंचा है। सरकारी आदादोशुमार से यह भी इंकशाफ हुआ है कि इसी मुद्दत के दौरान तिब्बी अमले और एम्बुलेंस अमले को निशाना बनाने वाले हमलों में कम अज कम 116 अफराद हलाक 263 जख्मी हुए हैं।
1: नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने जुमे को कहा कि इत्तेहाद एक मजबूत रास्ते पर है और बतदरीज एक ही इत्तेहादी पर इन्हिसार को कम कर रहा है। स्वीडन में नेटो के वज़ीर ख़ारिजा एक सरबराह इजलास में मुनक़िद हुआ। रूटे ने मुलाकात से कबल सहाफ़ियों से कहा कि हम जिस राह पर गामजन हैं वो एक मजबूत यूरोप और एक मजबूत नेटो है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हम वक्त के साथ कदम ब कदम सिर्फ एक ही इत्तेहादी पर इतना इन्हिसार नहीं करेंगे जितना हम तवील अरसे तक करते रहे हैं। रूटे ने कहा कि यह तब्दीली अमरीका को दीगर तरजीहात पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए ज़्यादा गुंजाइश देगी। हम यूरोपीय इत्तेहादी दिफाई अखराजात बढ़ाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि ना सिर्फ इसलिए कि आप जो खर्च कर रहे हैं उसे अमरीका के साथ यकसा किया जा सके, बल्कि इस बात को भी यकीनी बनाने के लिए कि अपने दुश्मनों के खिलाफ दिफा के लिए जो कुछ दरकार है वो हमारे पास मौजूद हो। नेटो के सरबराह ने इस बात पर भी जोर दिया कि जब यूरोपीय ममालिक ज़्यादा जिम्मेदारी संभालेंगे तो अमरीका यूरोप में जौहरी और रिवायती दिफा दोनों में कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि यूरोपियों ने जब यूरोपीय अड्डों का मामला है तो पैगाम सुन लिया है। ये यूरोपीय ममालिक की अमरीका के साथ दो तरफा जिम्मेदारियाँ हैं ताकि अमरीका इन दो तरफा जिम्मेदारियों को दुनिया के दीगर हिस्सों में अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर सके। रूटे ने दोबारा वाज़े किया कि यूरोपीय इत्तेहादी अपनी फौजी अड्डों तक रसाई के बारे में दो तरफा वादों के तहत वही कर रहे हैं जो अमरीका तवक्को कर सकता था। रूटे ने मजीद कहा कि आबना हुरमुज इस वक्त बंद है और यहाँ जहाज रानी की आज़ादाना नकलो हरकत शदीद ख़तरे में है, लिहाजा ये बिलाशुबा तमाम इत्तेहादियों का भी मफाद है। शायद नेटो बतौर इत्तेहाद के तौर पर नहीं मगर वाज तौर पर जहाँ भी हम मदद कर सकते हैं हम मौजूद होंगे।
0: अमरीका ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ जंग की वजह से ताइवान को $14 बिलियन के हथियारों की फरोख्त आर्जी तौर पर रोक रहा है। वाशिंगटन डीसी में सेनेट की एरो पर प्रेशन डिफेंस सब कमेटी की समात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम नेवी सेक्रेटरी हंगकाओ ने अपने इस फैसले की वजाहत की। उन्होंने इस बात पर इसरार किया अमरीकी फौज के पास अब भी काफ़ी मकदार मिजाइल इंटर्स सेप्टर्स मौजूद हैं जबकि दूसरी तरफ गोला बारूद के गिरते हुए जखायर की रिपोर्ट्स पर जांच पड़ताल बढ़ रही है। हंगकाओ ने कमेटी के ऐलान को क्यों बताया, इस वक्त हम ये आर्जी वक्फा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके हमारे पास एपेक फ्यूरी के लिए दरकार गोला बारूद मौजूद हो जो कि हमारे पास काफ़ी मकदार में, हम सिर्फ ये यकीनी बनाना चाहते हैं हमारे पास हर चीज़ होनी चाहिए। काओ ने कहा कि हथियारों की फरोख की हतमी मंजूरी का फैसला वजीर दफा पेट हेक्स और वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो पर मुनहसर होगा। ताहम के ये बयान सदर डोनाल्ड ट्रंप की जांच वक्फे की बताया कि वजह से मुतसादम दिखाई देते हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को बताया, मैंने अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी, हम देखेंगे कि क्या होता है, मैं ये भी कर सकता हूँ नहीं भी कर सकता। सदर ने चीन के दौरे के बाद साफियों को बताया उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ इस मौज पर मुफसल गुफ्तगू की है और मजीद कहा वो अगले चंद दिनों के अंदर कोई हतमी फैसला सुनाएंगे।
1: और आलमगीर एथनो स्पोर्ट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 8वें एथनो स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल ने इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पर आने वालों का इस्तकबाल करना शुरू कर दिया है। टीआरटी के मीडिया पार्टनर के तौर पर इस साल 21 से 24 मई के दौरान मुनक़िद होने वाले इस फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पर मुनक़िद की गई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आलमी एथनो स्पोर्ट्स कन्फेडरेशन के सदर बिलाल एर्दोगन ने कहा कि फेस्टिवल के दौरान सकाफ़ती तनवो को मिलकर महसूस किया जाएगा। आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहते हुए एर्दोगन ने बताया कि फेस्टिवल के दौरान कुश्ती और घुड़सवारी समेत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी मुनक़िद की जाएंगी। फेस्टिवल के दायरे कार में मुनक़िद होने वाली सरगर्मियों में बच्चों और ख़ानदानों के रिवायती सकाफत से जुड़ने का इजहार करते हुए एर्दोगन ने कहा कि इस साल हम यहाँ एक बार फिर 4 दिनों तक अपनी सकाफत की दौलत को मिलकर जिएंगे। हम अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ एक ख़ानदान की तरह रिवायात की फिज़ा में सांस लेंगे और दुनिया भर से आने वाले मेहमान फ़नकारों खिलाड़ियों और सकाफती शख्सियात की यहाँ मिलकर मेज़बानी करेंगे। इस्तांबुल की बैनुल अक़वामी अहमियत की तरफ इशारा करते हुए एर्दोगन ने तकरीब के अख्तिताम पर बच्चों के साथ मिलकर रिबन काटा और फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह किया। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।
0: हम सदाए तुर्की से दुनिया भर से मुखातिब हैं।